कहा है कि मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में बुलंद दबाव का निज़ाम छा गया, जिसकी वजह से दर्ज हरारत बढ़ गया। कुमामोतो प्रीफेक्चर में गुज़िश्ता माह आने वाले ताकतवर जलजले से मुतासरा इलाके में भी शदीद गर्मी पड़ी। ऊकी शहर में दर्ज हरारत 37.7 डिग्री और कुमामोतो शहर में 37.3 डिग्री तक पहुंच गया। शीगा प्रीफेक्चर के ओसू शहर में दर्ज हरारत 39.5 डिग्री और क्योटो शहर में 39.1 डिग्री पर पहुंच गया। हुकाम का कहना है कि वस्ती टोक्यो में दिन का बुलंद दर्ज हरारत 33.5 डिग्री पर पहुंचा। खानतो इलाके से ओकिनावा प्रीफेक्चर तक 31 प्रीफेक्चरों में लू लगने से बचाव के लिए इंतबाह लागू है। लोगों को मशवरा दिया जा रहा है कि वो एयर कंडीशनर इस्तेमाल करें, कसरत से पानी पिएं, नमक की कमी दूर करने के लिए नमक लें और बैरूनी सरगर्मियों से गुरेज करें। महकमा मौसमियात के हुकाम का ये भी कहना है कि हवा में नमी और बुलंद दर्ज हरारत की वजह से शुमाली से मगरबी जापान तक के वसी इलाकों में कुर्रे हवाई की सूरत हाल गैर मुस्तहकम हो जाएगी। बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ मकामी तौर पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। गर्म और मरतूब हवा का एक खत तोहोकू इलाके से गुजरेगा, जो मुमकिन तौर पर पीर की रात से मंगल तक बहरे जापान की तरफ मूसलाधार बारिश लाएगा। हुकाम जोर दे रहे हैं कि मिट्टी के तोदे गिरने, नशेबी इलाकों में सैलाब और दरियाओं में तुगयानी के साथ साथ आसमानी बिजली गिरने और बगोलों समेत हवा के तेज झकड़ों से चौकन न रहा जाए। दूसरी जंग अजीम के बाद सोवियत हिरासती कैंपों में हलाक हो जाने वाले जापानियों की यादगारी तकरीब के शुरका ने हुकूमत जापान पर जोर दिया है कि वो इज्तिमाही हिरासत की मुकम्मल मालूमात फराहम करे। साबिक सोवियत यूनियन की जानिब से चीन और दीगर जगहों पर जापानी फौजियों और शहरियों को साइबेरिया और दीगर मकामात पर मुशक्कती कैंपों में भेजे जाने का हुक्म देने को 23 अगस्त के दिन 81 साल मुकम्मल हो गए हैं। टोक्यो के चिदोरीगा फूची कौमी कब्रस्तान में मुनक़िदा एक तकरीब में तकरीबन 200 अफराद ने हलाकशुदगान के लिए एक लम्हे की खामोशी इख्तियार की। इस तकरीब का अहतमाम साबिक कैदियों और सोगवार खानदानों की एक अंजुमन ने किया था। जापान की वजारत बहबूद के अंदाजे के मुताबिक हिरासत के दौरान तकरीबन 55,000 कैदियों की मौत हुई, लेकिन उनकी सही तादाद और कैदियों की तकालीफ की वसत ताहाल मालूम नहीं है। 20,264 कैदियों की बाकियात बाजियाफ्त की जा चुकी हैं, लेकिन यूक्रेन पर रूसी हमले के दौरान रूस में बाकियात जमा करने का काम रोक दिया गया है। साबिक कैदी निशिकुरा मसारू ने कहा कि जापानी माशरे ने अभी तक साइबेरिया की हिरासत पर एक तवील और सख्त नज़र नहीं डाली है। उन्होंने जोर दिया कि हकाइक की मुकम्मल छानबीन और जांच की जाए ताकि ये अलमिया कभी ना दोहराया जाए।

ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। जापानी मुहक्किकीन क्वांटम कंप्यूटिंग के शोबे या ऐसे निजाम में पेशरफ कर रहे हैं जो पेचीदा मुश्किलात को हल करने में आम कंप्यूटर्स के मुकाबले में ज्यादा तेज हैं। मुल्क का पहला मॉडल जिसको न्यूट्रल एटम कहा जाता है अब वस्ती जापान के आईची प्रीफेक्चर में काम कर रहा है। क्वांटम कंप्यूटर्स मुश्किलात को हल करने के मुताद्दिद इम्कानात तलाश करने के लिए एटम और इलेक्ट्रॉन जैसे जर्रात के मुनफरिद रवैये इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रल एटम क्वांटम कंप्यूटर एक एक किस्म है जो मुमकिन तजारती इस्तेमाल के लिए जेर गौर है। ये जापान मॉडल इंस्टीट्यूट फॉर मॉलिक्यूलर साइंस समेत एक ग्रुप ने तैयार किया है। मुहक्किकीन का कहना है कि ये ऐसे एटमों को मुंसलिक करने के लिए वैक्यूम चैम्बर के अंदर लेजर का इस्तेमाल करता है जो बरकी तौर पर चार्ज नहीं होते हैं। इत्तलात के मुताबिक ये मॉडल क्वांटम कंप्यूटर्स की दीगर अकसाम के बरक्स कमरे के दर्ज हरारत पर काम कर सकता है। इसका मतलब है कि इसे कूलिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है और इसे ज्यादा अमली इस्तेमाल के लिए छोटे साइज में रखा जा सकता है।

0: इसे तैयार करने वालों का कहना है कि उनका सिस्टम फिलहाल बुनियादी हिसाब किताब कर सकता है, अगले इकदाम में बड़े पैमाने पर हिसाब शुमार को फाल करने के लिए इस्तेकाम को यकीनी बनाना शामिल है। वियतनाम जंग की तस्वीर खींचने के लिए मशहूर जापानी फोटो जर्नलिस्ट इशिकावा बुनियो इतवार के रोज नागानो प्रीफेक्चर के एक अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं। उनकी उम्र 88 वर्ष थी। इशिकावा ने 1965 और 1968 के दरमियान जनूबी वियतनाम के साइगॉन में एक फ्रीलांस फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर काम किया था, जो अब होची मिन शहर है। वो बाद में शिमाली वियतनाम चले गए थे। उन्होंने वियतनाम जंग के हकायक तस्वीरी शक्ल में रिकॉर्ड करते हुए 15,000 से ज्यादा तस्वीर खींची, यहाँ तक कि वो एक फोटोग्राफर के तौर पर अमरीकी फौजियों के साथ जुड़ गए। इशिकावा को जापान के मारूफ जंगी फोटोग्राफर्स में से एक के तौर पर जाना जाता है। वो 1969 से ओकिनावा में भी सरगर्म थे। इशिकावा ने फादेना हवाई अड्डे से वियतनाम के लिए रवाना होते B-52 बम्बार तैयारों और उन फौजियों की तस्वीर खींची जिन्हें वियतनाम भेजा जा रहा था। चीन में होने वाले एक मुकाबले में एक इंसान नुमा रोबोट ने 100 मीटर की दौड़ का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। दूसरी आलमी इंसान नुमा रोबोट गेम्स हफ्ते के रोज बीजिंग में शुरू हुई। चीनी दार हुकूमत की बल्दियाती हुकूमत और दीगर इदारे इस 5 रोजा मुकाबले की मेजबानी कर रहे हैं। इसमें जापान जैसे 16 ममालिक की कंपनियों समेत 666 टीमों के 2,000 से ज्यादा इंसान नुमा रोबोट हिस्सा ले रहे हैं। हिस्सा लेने वाले रोबोट्स की तादाद में पिछले साल से 4 गुना इजाफा हुआ। वो 51 इवेंट्स में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें ट्रैक एंड फील्ड, फुटबॉल और खाने पीने की चीजें पेश करने जैसे अमली काम शामिल हैं। 100 मीटर दौड़ के इब्तदाई राउंड में एक रोबोट ने 9.32 सेकेंड में दौड़ मुकम्मल की। उसने पिछले साल के 21.50 सेकेंड के जीतने के वक्त को पीछे छोड़ दिया और यहां तक कि यूसेन बोल्ट के कायम करदा 9.58 सेकेंड का इंसानी आलमी रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। चीनी हुकूमत रोबोट की सनत को तरक्की के एक नए शोबे के तौर पर देखती है। चुनाचा बहुत सी कंपनियां उनकी तैयारी की दौड़ में शामिल हो गई हैं, जिसकी वजह से इस शोबे में तकनीकी जिद्दत आई है।
1: इसके साथ ही खबरें खत्म हुईं।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 25 अगस्त मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खवानों से सुने समाचार। जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु का कहना है कि दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के सर्वोच्च पदों पर जापानी न्यायाधीशों का होना अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्थानों को मजबूती देने के जापान के प्रयासों को दर्शाता है। सोमवार को टोक्यो में आयोजित 4वीं टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय विधि संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को मोतेगी ने एक वीडियो संदेश से संबोधित किया। विदेश मंत्रालय एशियाई और अफ्रीकी देशों के सरकारी अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का सटीक ज्ञान देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन करता है। मोतेगी ने कहा, हमने जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाई है वो कई चुनौतियों से घिर गई है, इसलिए हम एक ऐसे महत्वपूर्ण युग में जी रहे हैं जो ये निर्धारित करेगा कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय समग्र रूप से कानून के शासन पर आधारित एक स्वतंत्र और खुली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा कर सकता है।

उन्होंने ये भी कहा कि जापान विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और कानूनी व्यवस्था बनाए रखने में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्थानों की भूमिका को बहुत महत्व देता है और वो इन संस्थानों को मजबूती देने में सक्रिय है। मोतेगी ने जोर देते हुए कहा, हमारे सामूहिक प्रयास इस बात में दिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय दोनों के अध्यक्ष जापानी न्यायाधीश हैं। जापान सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए निवास परमिट प्रक्रिया से जुड़े शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया है। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और आव्रजन नियंत्रण अधिनियम में संशोधन के अनुरूप ये 1 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा। स्थायी निवास परमिट प्राप्त करने का शुल्क मौजूदा 10,000 येन यानी लगभग $63 से बढ़ाकर 2,00,000 येन यानी $1,250 से अधिक कर दिया जाएगा। ये प्रक्रिया केवल व्यक्तिगत रूप से ही पूरी की जा सकती है। निवास वीजा की अवधि बढ़वाने या निवास दर्जा बदलवाने का मौजूदा शुल्क 6,000 येन यानी लगभग $38 है, जबकि इसका ऑनलाइन शुल्क 5,500 येन यानी लगभग $35 है। लेकिन अब 3 माह के निवास वीजा का ऑफलाइन और ऑनलाइन शुल्क बढ़ाकर 10,000 येन यानी लगभग $63 कर दिया जाएगा। 1 साल के निवास वीजा का शुल्क बढ़ाकर 33,000 येन यानी $205 से अधिक कर दिया जाएगा, जबकि इसका ऑनलाइन शुल्क 27,000 येन यानी लगभग $170 होगा। 5 साल या उससे अधिक के निवास वीजा का शुल्क काउंटर पर 75,000 येन यानी लगभग $470 और ऑनलाइन शुल्क 65,000 येन यानी $400 से अधिक कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि वो शरणार्थी दर्जा प्राप्त लोगों सहित वित्तीय कठिनाइयों से जूझ रहे आवेदकों के लिए शुल्कों में रियायत देगी।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। एनएचके को पता चला है कि पूर्वोत्तर जापान के फुकुशिमा प्रीफेक्चर स्थित फुकुशिमा दाइची परमाणु बिजली घर में 2011 की दुर्घटना के बाद दूषण मुक्ति कार्यों के तहत हटाई गई मिट्टी को टोक्यो के बाहर दो जगहों पर इस्तेमाल किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार सरकार इस मिट्टी को टोक्यो के पड़ोसी शहर साइतामा और पूर्वोत्तर जापान के सेंदाई शहर में केंद्र सरकार के कार्यालय परिसरों में उपयोग करने की व्यवस्था के अंतिम चरण में है। मिट्टी को फुकुशिमा प्रीफेक्चर स्थित अस्थायी भंडारण सुविधाओं में रखा गया है। कानून के अनुसार मार्च 2045 तक प्रीफेक्चर से बाहर इसका निपटान अनिवार्य है। सरकार की योजना है कि रेडियोधर्मी पदार्थों की कम सांद्रता वाली मिट्टी का इस्तेमाल देश भर में सार्वजनिक कार्यों और अन्य परियोजनाओं में किया जाए, ताकि अंतिम निपटान तक इसकी मात्रा में कमी लाई जा सके। इस योजना पर लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए सरकार पिछले साल से ही टोक्यो में प्रधानमंत्री कार्यालय व केंद्र सरकार के मंत्रालयों और एजेंसियों सहित कई स्थानों पर इसका उपयोग कर रही है। टोक्यो में मिट्टी को फूलों की कुछ क्यारियों और अन्य जगहों में डाला गया है। इसमें सरकारी मानक के अनुरूप प्रति किलोग्राम 8,000 बैक्वेरल से अधिक रेडियोधर्मी सीजियम नहीं है। इस मिट्टी को फैलने से रोकने के लिए इसके ऊपर साधारण मिट्टी डाली जाती है। दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो प्रीफेक्चर में हाल में आए भीषण भूकंप के बाद सोशल मीडिया पर निराधार जानकारी फैल गई है कि मुस्लिम निवासियों ने आश्रय स्थलों में परोसे गए पोर्क के व्यंजन की शिकायत करके परेशानी खड़ी की। एनएचके ने कुमामोतो प्रीफेक्चर सरकार के अधिकारियों और प्रीफेक्चर की 38 स्थानीय नगर पालिकाओं के अधिकारियों का साक्षात्कार लिया, जिन्होंने आश्रय स्थल स्थापित किए थे और पाया कि ऐसी कोई समस्या सामने नहीं आई थी। पिछले महीने कुमामोतो में भूकंप के बाद एक्स, थ्रेड्स और अन्य सोशल मीडिया पर ये कहा गया कि मुसलमानों ने खाद्य सहायता के रूप में परोसे गए पोर्क वाले मिसो सूप के बारे में शिकायतें की। ऐसी पोस्ट्स को कुल मिलाकर 1,60,00,000 से अधिक बार देखा गया। खबरों के मुताबिक ये पोस्ट्स भूकंप आने से पहले एक ऑनलाइन टिप्पणी पर आधारित थे। दरअसल प्रीफेक्चर में रहने वाले मुस्लिम लोगों के एक समूह और अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संस्थाओं ने भूकंप से प्रभावित मुस्लिम लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई थी। कुमामोतो प्रीफेक्चर के एक अधिकारी ने एनएचके को बताया कि आश्रय स्थलों पर इस तरह की कोई समस्या नहीं थी और किसी भी मुस्लिम व्यक्ति ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की कि खाद्य सहायता के रूप में उसे पोर्क व्यंजन परोसा गया। कुमामोतो इस्लामिक सेंटर के प्रमुख ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि इस तरह के पोस्ट ऑनलाइन फैलाए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग इन्हें सच मान सकते हैं। उन्होंने कहा कि फर्जी खबरों को नजरअंदाज करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं। उन्होंने कहा कि वे 25 वर्षों से जापान में रह रहे हैं और हाल में वे मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव में वृद्धि देख रहे हैं। उन्होंने कहा वे चाहते हैं कि जापानी लोग उन्हें बताएं अगर देश में मुस्लिम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, और वे इस्लाम के बारे में सवालों के जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 26वें पाठ में किसी चीज की कई विशेषताएं एक साथ बताना सीखेंगे।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो हारूसान हाउस के निवासियों मिया और काइतो और मकान मालकिन हारूजी के साथ ओहानामी करने एक उद्यान में आई है।
0: जापान के लोग वसंत ऋतु में खूबसूरत गुलाबी चेरी के फूल यानी साकुरा देखने उद्यानों में जाते हैं। इस प्रथा को ओहानामी कहते हैं। लोग पेड़ों तले टहलते हैं, उनके नीचे बैठकर खाते पीते हैं। ताम भी अपने दोस्तों के साथ चेरी के एक पेड़ के नीचे दरी बिछाकर बैठी है।
1: तो आइए सुनते हैं 26वें पाठ की बातचीत।
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
3: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
4: いいね。
0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
1: काइतो ने खाने के डिब्बे निकालकर दरी के बीच में रखते हुए कहा,
2: ओबेंटो दायो।
0: ये हैं खाने के डिब्बे।
2: बोकु गा त्सुकत्ता दा। दोज़ो।
0: मैंने बनाए हैं। लो।
1: मिया रंग बिरंगा खाने का डिब्बा देखकर बहुत प्रभावित हो गई। उसने कहा,
3: कीरे।
1: कितना सुंदर है।
0: ताम ने भी प्रशंसा की,
3: सुगोई।
1: वाह।
3: इतादाकिमासु।
1: शुक्रिया।
0: फिर ताम ने जापानी ऑमलेट से शुरुआत की।
3: कोनो तमागोयाकी अमाकुते ओइशी देसु।
1: ये जापानी ऑमलेट मीठा और स्वादिष्ट है।
0: उसके बाद मिया ने कहा,
4: काइतो वा होंतो नी ryōri ga jōzu da ne।
1: काइतो, तुम सचमुच बहुत अच्छा खाना पकाते हो।
0: तो काइतो ने जवाब दिया,

0: シェフになりたいんだ。
1: メイ、シェフ बनना चाहता हूं。
2: ये सुनकर मियां ने कहा,
3: いいね。
2: ये तो अच्छी बात है।
1: लगता है काई तो बहुत प्रतिभाशाली है।
2: आज का मुख्य वाक्य है,
3: この卵焼き甘くて美味しいです。
2: यानी ये जापानी ऑमलेट मीठा और स्वादिष्ट है। ये वाक्य सीखकर आप किसी चीज की कई विशेषताएं एक साथ बता सकेंगे।
1: इस वाक्य में
4: कोनो तमागोयाकी
1: का अर्थ है ये जापानी ऑमलेट।
4: तमागोयाकी
1: का मतलब है जापानी ऑमलेट और ये खाने के डिब्बे में शामिल किया जाने वाला एक आम व्यंजन है।
2: इसे बनाने के लिए अंडों को जायकेदार रसे और चीनी के साथ फेंटते हैं और पके हुए अंडे की पतली परतों को लपेट कर मोटा और नर्म ऑमलेट तैयार करते हैं।
4: अमाकुते
1: बना है ई विशेषण
4: अमाई
1: से, जिसका अर्थ है मीठा, और
4: ओइशी
1: का मतलब है स्वादिष्ट।
2: इस वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि किसी चीज की विशेषताएं बताने के लिए दो या अधिक विशेषणों को जोड़ सकते हैं। अगर आज के मुख्य वाक्य की तरह पहला विशेषण ई विशेषण हो तो उसके अंत में लगे ई को हटाकर
4: कुते
2: लगाते हैं और उसके बाद अगला विशेषण जोड़ते हैं।
1: जैसे इस वाक्य में अमाई से बना है
4: अमाकुते
1: और उसके बाद लगा है
4: ओइशी,
1: तो बन गया
4: अमाकुते ओइशी।
2: तो सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
4: अमाकुते ओइशी देसु। この卵焼き甘くて美味しいです。
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक महिला किसी उद्यान के बारे में अपने विचार बता रही है।
5: 上野公園どうでしたか？
6: 広くて綺麗でとても良かったです。
2: अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले पुरुष ने पूछा,
5: उएनो कोएन दो देश्ता का?
1: उएनो पार्क कैसा लगा?
2: यहाँ
4: उएनो कोएन
2: का अर्थ है उएनो पार्क। ये उद्यान टोक्यो में है और बहुत बड़ा है।
4: दो देश्ता
2: का मतलब है कैसा लगा। ये किसी पुरानी बात के बारे में विचार पूछने का तरीका है।
1: महिला ने उत्तर दिया,
6: हिरोकुते किरेई दे तोतेमो योकत्ता देसु।
2: बड़ा, सुंदर और बहुत अच्छा था।
4: हिरोकुते
1: बना है ई विशेषण
4: हिरोई
1: से, जिसका अर्थ है बड़ा। विशेषण के इस रूप का उपयोग अगला विशेषण जोड़ने के लिए किया जाता है।
2: उसके बाद आया है शब्द
4: किरेदे,
2: जो ना विशेषण
4: किरेना
2: यानी सुंदर से बना है। ना विशेषण के बाद एक और विशेषण जोड़ने के लिए अंत का ना हटाकर
4: दे
2: लगाते हैं।
1: और
4: तोतेमो योकात्ता देसु
1: का अर्थ है बहुत अच्छा था। तो इसे सुनिए और अभ्यास कर लीजिए।
4: हिरोकुते किरेई दे, हिरोकुते किरेई दे तोतेमो योकात्ता देसु।
2: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको बिल्ली की प्यारी सी मूर्ति उपहार में मिली है। आप बोलना चाहते हैं कि वो छोटी और प्यारी है। छोटी को जापानी भाषा में कहेंगे
4: चीसाई
2: और प्यारी को
4: कवाई।
2: वाक्य के अंत में ने लगाकर आप दूसरे व्यक्ति की सहमति की आशा कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए।
6: चीसकुते कवाई देसु ने।
1: अब मान लीजिए किसी ने जापान की रेल सेवा के बारे में आपकी राय पूछी है। आप कहना चाहते हैं कि जापानी रेलगाड़ियां समय की पाबंद और सुविधाजनक हैं। समय की पाबंद कहने के लिए जापानी शब्द है
4: सेकाकुना
1: और सुविधाजनक के लिए जापानी शब्द है
4: बेंडीना।
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
2: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो काइतो की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
0: दोज़ो।
1: आज के पाठ में
4: दोज़ो
1: का मतलब है लो। इस शब्द का कई तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, जैसे किसी को खाने की चीज देते समय या कुछ करने की अनुमति देने के लिए। कोई चीज पकड़ाते समय भी इसका उपयोग कर सकते हैं।
2: तो सुनिए और दोहराइए।
4: दोज़ो।
1: अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
0: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
3: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
6: カイトは本当に料理が上手だね。
0: 僕、シェフになりたいんだ。
6: いいね。
7: ハルさんの知恵袋。
2: अब हम लेकर आए हैं अंश, हारू जी की सलाह। आज हम बताएंगे ओहानामी यानी चेरी के फूल निहारने की प्रथा के बारे में।
1: जापान में चेरी के फूल यानी साकुरा लगभग मार्च से मई के महीने तक जापान के दक्षिण से लेकर उत्तर की दिशा में खिलते हैं।
2: लोग ये जानने के लिए मौसम पूर्वानुमान सुनते रहते हैं कि ये फूल कब कहाँ खिल रहे हैं और कितने प्रतिशत खिल चुके हैं। उस जानकारी के आधार पर लोग ओहानामी करने की योजना बनाते हैं।
1: ओहानामी के लिए लोग अपने घर के पास के बाग बगीचों में या सड़क किनारे लगे चेरी के पेड़ देखने तो जाते ही हैं। साथ ही इन फूलों के लिए प्रसिद्ध दूर के क्षेत्रों में जाने वाले लोग भी कम नहीं है।
2: उएनो पार्क और शिंजुकु ग्योएन राष्ट्रीय बाग ओहानामी के लिए टोक्यो के लोकप्रिय स्थलों में से है। इसके अलावा सुमिदा नदी और मेगुरो नदी के किनारे लगे पेड़ भी बहुत सारे लोगों को आकर्षित करते हैं।
1: कई जगहों पर रात में पेड़ों पर लाइटें भी लगाई जाती हैं, जिससे रात को भी ओहानामी का आनंद लिया जा सके।
2: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
1: अगले पाठ में ताम रामेन नूडल्स की एक लोकप्रिय दुकान में जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 25 अगस्त मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खवानो से सुने समाचार। जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु का कहना है कि दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के सर्वोच्च पदों पर जापानी न्यायाधीशों का होना अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्थानों को मजबूती देने के जापान के प्रयासों को दर्शाता है। सोमवार को टोक्यो में आयोजित 4वीं टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय विधि संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को मोतेगी ने एक वीडियो संदेश से संबोधित किया। विदेश मंत्रालय एशियाई और अफ्रीकी देशों के सरकारी अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का सटीक ज्ञान देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन करता है। मोतेगी ने कहा, हमने जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाई है वो कई चुनौतियों से घिर गई है, इसलिए हम एक ऐसे महत्वपूर्ण युग में जी रहे हैं जो ये निर्धारित करेगा कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय समग्र रूप से कानून के शासन पर आधारित एक स्वतंत्र और खुली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जापान विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और कानूनी व्यवस्था बनाए रखने में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्थानों की भूमिका को बहुत महत्व देता है और वो इन संस्थानों को मजबूती देने में सक्रिय है। मोतेगी ने जोर देते हुए कहा, हमारे सामूहिक प्रयास इस बात में दिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय दोनों के अध्यक्ष जापानी न्यायाधीश हैं। जापान सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए निवास परमिट प्रक्रिया से जुड़े शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया है। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और आव्रजन नियंत्रण अधिनियम में संशोधन के अनुरूप ये 1 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा। स्थायी निवास परमिट प्राप्त करने का शुल्क मौजूदा 10,000 येन यानी लगभग

$1,061 से बढ़ाकर 2,00,000 यानी $1,250 से अधिक कर दिया जाएगा। ये प्रक्रिया केवल व्यक्तिगत रूप से ही पूरी की जा सकती है। निवास वीजा की अवधि बढ़वाने या निवास दर्जा बदलवाने का मौजूदा शुल्क 6,000 येन यानी लगभग $38 है, जबकि इसका ऑनलाइन शुल्क 5,500 येन यानी लगभग $35 है। लेकिन अब 3 माह के निवास वीजा का ऑफलाइन और ऑनलाइन शुल्क बढ़ाकर 10,000 येन यानी लगभग $63 कर दिया जाएगा। 1 साल के निवास वीजा का शुल्क बढ़ाकर 33,000 येन यानी $205 से अधिक कर दिया जाएगा, जबकि इसका ऑनलाइन शुल्क 27,000 येन यानी लगभग $170 होगा। 5 साल या उससे अधिक के निवास वीजा का शुल्क काउंटर पर 75,000 येन यानी लगभग $470 और ऑनलाइन शुल्क 65,000 येन यानी $400 से अधिक कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि वो शरणार्थी दर्जा प्राप्त लोगों सहित वित्तीय कठिनाइयों से जूझ रहे आवेदकों के लिए शुल्कों में रियायत देगी।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। एनएचके को पता चला है कि पूर्वोत्तर जापान के फुकुशिमा प्रीफेक्चर स्थित फुकुशिमा दाइची परमाणु बिजली घर में 2011 की दुर्घटना के बाद दूषण मुक्ति कार्यों के तहत हटाई गई मिट्टी को टोक्यो के बाहर दो जगहों पर इस्तेमाल किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार सरकार इस मिट्टी को टोक्यो के पड़ोसी शहर साइतामा और पूर्वोत्तर जापान के सेंदाई शहर में केंद्र सरकार के कार्यालय परिसरों में उपयोग करने की व्यवस्था के अंतिम चरण में है। मिट्टी को फुकुशिमा प्रीफेक्चर स्थित अस्थायी भंडारण सुविधाओं में रखा गया है। कानून के अनुसार मार्च 2045 तक प्रीफेक्चर से बाहर इसका निपटान अनिवार्य है। सरकार की योजना है कि रेडियोधर्मी पदार्थों की कम सांद्रता वाली मिट्टी का इस्तेमाल देश भर में सार्वजनिक कार्यों और अन्य परियोजनाओं में किया जाए, ताकि अंतिम निपटान तक इसकी मात्रा में कमी लाई जा सके। इस योजना पर लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए सरकार पिछले साल से ही टोक्यो में प्रधानमंत्री कार्यालय व केंद्र सरकार के मंत्रालयों और एजेंसियों सहित कई स्थानों पर इसका उपयोग कर रही है। टोक्यो में मिट्टी को फूलों की कुछ क्यारियों और अन्य जगहों में डाला गया है। इसमें सरकारी मानक के अनुरूप प्रति किलोग्राम 8,000 बैक्वेरल से अधिक रेडियोधर्मी सीजियम नहीं है। इस मिट्टी को फैलने से रोकने के लिए इसके ऊपर साधारण मिट्टी डाली जाती है। दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो प्रीफेक्चर में हाल में आए भीषण भूकंप के बाद सोशल मीडिया पर निराधार जानकारी फैल गई है कि मुस्लिम निवासियों ने आश्रय स्थलों में परोसे गए पोर्क के व्यंजन की शिकायत करके परेशानी खड़ी की। एनएचके ने कुमामोतो प्रीफेक्चर सरकार के अधिकारियों और प्रीफेक्चर की 38 स्थानीय नगर पालिकाओं के अधिकारियों का साक्षात्कार लिया, जिन्होंने आश्रय स्थल स्थापित किए थे और पाया कि ऐसी कोई समस्या सामने नहीं आई थी। पिछले महीने कुमामोतो में भूकंप के बाद एक्स, थ्रेड्स और अन्य सोशल मीडिया पर ये कहा गया कि मुसलमानों ने खाद्य सहायता के रूप में परोसे गए पोर्क वाले मिसो सूप के बारे में शिकायतें की। ऐसी पोस्ट्स को कुल मिलाकर 1,60,00,000 से अधिक बार देखा गया। खबरों के मुताबिक ये पोस्ट्स भूकंप आने से पहले एक ऑनलाइन टिप्पणी पर आधारित थे। दरअसल प्रीफेक्चर में रहने वाले मुस्लिम लोगों के एक समूह और अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संस्थाओं ने भूकंप से प्रभावित मुस्लिम लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई थी। कुमामोतो प्रीफेक्चर के एक अधिकारी ने एनएचके को बताया कि आश्रय स्थलों पर इस तरह की कोई समस्या नहीं थी और किसी भी मुस्लिम व्यक्ति ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की कि खाद्य सहायता के रूप में उसे पोर्क व्यंजन परोसा गया। कुमामोतो इस्लामिक सेंटर के प्रमुख ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि इस तरह के पोस्ट ऑनलाइन फैलाए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग इन्हें सच मान सकते हैं। उन्होंने कहा कि फर्जी खबरों को नजरअंदाज करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं। उन्होंने कहा कि वे 25 वर्षों से जापान में रह रहे हैं और हाल में वे मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव में वृद्धि देख रहे हैं। उन्होंने कहा वे चाहते हैं कि जापानी लोग उन्हें बताएं अगर देश में मुस्लिम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, और वे इस्लाम के बारे में सवालों के जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 26वें पाठ में किसी चीज की कई विशेषताएं एक साथ बताना सीखेंगे।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो हारूसान हाउस के निवासियों मिया और काइतो और मकान मालकिन हारूजी के साथ ओहानामी करने एक उद्यान में आई है।
0: जापान के लोग वसंत ऋतु में खूबसूरत गुलाबी चेरी के फूल यानी साकुरा देखने उद्यानों में जाते हैं। इस प्रथा को ओहानामी कहते हैं। लोग पेड़ों तले टहलते हैं, उनके नीचे बैठकर खाते पीते हैं। ताम भी अपने दोस्तों के साथ चेरी के एक पेड़ के नीचे दरी बिछाकर बैठी है।
1: तो आइए सुनते हैं 26वें पाठ की बातचीत।
2: ओ बेंटो दा यो, बुकु गा त्सुकुत्तान दा, दोज़ो।
3: किरे, सुगोई, इतादाकिमास। कोनो तमागो याकी, अमाकुते ओइशी देस।
4: काइतो वा, होंतो नी ल्योरी गा जोज़ु दा ने।
2: बुकु, शेफ नी नारीताई न दा।
4: ई ने।
0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
1: काइतो ने खाने के डिब्बे निकालकर दरी के बीच में रखते हुए कहा,
2: ओ बेंटो दा यो।
0: ये हैं खाने के डिब्बे।
2: बुकु गा त्सुकुत्तान दा, दोज़ो।
0: मैंने बनाए हैं, लो।
1: मिया रंग बिरंगा खाने का डिब्बा देखकर बहुत प्रभावित हो गई। उसने कहा,
3: किरे,
1: कितना सुंदर है।
0: ताम ने भी प्रशंसा की,
3: सुगोई,
1: वाह।
3: इतादाकिमास,
1: शुक्रिया।
0: फिर ताम ने जापानी ऑमलेट से शुरुआत की।
3: कोनो तमागो याकी अमाकुते ओइशी देस।
1: ये जापानी ऑमलेट मीठा और स्वादिष्ट है।
0: उसके बाद मिया ने कहा,
4: काइतो वा होंतो नी ल्योरी गा जोज़ु दा ने।
1: काइतो, तुम सचमुच बहुत अच्छा खाना पकाते हो।
0: तो काइतो ने जवाब दिया,
2: बुकु शेफ नी नारीताई न दा।
0: मैं शेफ बनना चाहता हूँ।
1: ये सुनकर मिया ने कहा,
4: ई ने,
1: ये तो अच्छी बात है।
0: लगता है काइतो बहुत प्रतिभाशाली है।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
3: कोनो तमागो याकी अमाकुते ओइशी देस।
1: यानी ये जापानी ऑमलेट मीठा और स्वादिष्ट है। ये वाक्य सीखकर आप किसी चीज की कई विशेषताएं एक साथ बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: कोनो तमागो याकी
0: का अर्थ है ये जापानी ऑमलेट।
5: तमागोयाकी
0: का मतलब है जापानी ऑमलेट और ये खाने के डिब्बे में शामिल किया जाने वाला एक आम व्यंजन है।
1: इसे बनाने के लिए अंडों को जायकेदार रसे और चीनी के साथ फेंटते हैं और पके हुए अंडे की पतली परतों को लपेटकर मोटा और नर्म ऑमलेट तैयार करते हैं।
5: अमाकुते
0: बना है ई विशेषण
5: अमाई
0: से, जिसका अर्थ है मीठा, और
5: ओइशी
0: का मतलब है स्वादिष्ट।
1: इस वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी चीज की विशेषताएं बताने के लिए दो या अधिक विशेषणों को जोड़ सकते हैं। अगर आज के मुख्य वाक्य की तरह पहला विशेषण ई विशेषण हो तो उसके अंत में लगे ई को हटाकर
5: कुते
1: लगाते हैं और उसके बाद अगला विशेषण जोड़ते हैं।
0: जैसे इस वाक्य में अमाई से बना है
5: अमाकुते
0: और उसके बाद लगा है
5: ओइशी,
0: तो बन गया
5: अमाकुते ओइशी।
1: तो सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: अमाकुते ओइशी देस। कोनो तमागो याकी अमाकुते ओइशी देस।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक महिला किसी उद्यान के बारे में अपने विचार बता रही है।
6: उएनो कोएन दो देशता का?
7: हिरोकुते किरेई दे तोतेमो योकात्ता देस।
1: अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले पुरुष ने पूछा,
6: उएनो कोएन दो देशता का?
0: उएनो पार्क कैसा लगा?
1: यहाँ
5: उएनो कोएन
1: का अर्थ है उएनो पार्क। ये उद्यान टोक्यो में है और बहुत बड़ा है।
5: どうでしたか?
1: का मतलब है कैसा लगा? ये किसी पुरानी बात के बारे में विचार पूछने का तरीका है।
0: महिला ने उत्तर दिया,
7: हिरोकुते किरेई दे, तोतेमो योकत्ता देस।
1: बड़ा, सुंदर और बहुत अच्छा था।
5: हिरोकुते
0: बना है ई विशेषण
5: हिरोई
0: से, जिसका अर्थ है बड़ा। विशेषण के इस रूप का उपयोग अगला विशेषण जोड़ने के लिए किया जाता है।
1: उसके बाद आया है शब्द
5: किरेदे,
1: जो ना विशेषण
5: किरेना
1: यानी सुंदर से बना है। ना विशेषण के बाद एक और विशेषण जोड़ने के लिए अंत का ना हटाकर
5: दे
1: लगाते हैं।
0: और
5: तोतेमो योकत्ता देस
0: का अर्थ है बहुत अच्छा था। तो इसे सुनिए और अभ्यास कर लीजिए।
5: हिरोकुते किरेई दे, हिरोकुते किरेई दे, तोतेमो योकत्ता देसु।
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको बिल्ली की प्यारी सी मूर्ति उपहार में मिली है। आप बोलना चाहते हैं कि वो छोटी और प्यारी है। छोटी को जापानी भाषा में कहेंगे
5: चीसाई
1: और प्यारी को
5: कवाई।
1: वाक्य के अंत में ने लगाकर आप दूसरे व्यक्ति की सहमति की आशा कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए।
3: चीसकते कवाई देसने।
0: अब मान लीजिए किसी ने जापान की रेल सेवा के बारे में आपकी राय पूछी है। आप कहना चाहते हैं कि जापानी रेलगाड़ियां समय की पाबंद और सुविधाजनक हैं। समय की पाबंद कहने के लिए जापानी शब्द है
5: सेकुना,
0: और सुविधाजनक के लिए जापानी शब्द है
5: बेंडीना।
0: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
8: सेकुदे बेंडी देसने।
1: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो काइतो की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
2: दोज़ो।
0: आज के पाठ में
5: दोज़ो
0: का मतलब है लो। इस शब्द का कई तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, जैसे किसी को खाने की चीज देते समय या कुछ करने की अनुमति देने के लिए। कोई चीज पकड़ाते समय भी इसका उपयोग कर सकते हैं।
1: तो सुनिए और दोहराइए।
5: दोज़ो।
0: अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
3: 綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。

0: いいね。
1: ハルさんの知恵袋。
2: अब हम लेकर आए हैं अंश हारू जी की सलाह। आज हम बताएंगे ओहानामी यानी चेरी के फूल निहारने की प्रथा के बारे में।
3: जापान में चेरी के फूल यानी साकुरा लगभग मार्च से मई के महीने तक जापान के दक्षिण से लेकर उत्तर की दिशा में खिलते हैं।
2: लोग ये जानने के लिए मौसम पूर्वानुमान सुनते रहते हैं कि ये फूल कब कहाँ खिल रहे हैं और कितने प्रतिशत खिल चुके हैं। उस जानकारी के आधार पर लोग ओहानामी करने की योजना बनाते हैं।
3: ओहानामी के लिए लोग अपने घर के पास के बाग बगीचों में या सड़क किनारे लगे चेरी के पेड़ देखने तो जाते ही हैं। साथ ही इन फूलों के लिए प्रसिद्ध दूर के क्षेत्रों में जाने वाले लोग भी कम नहीं हैं।
2: उएनो पार्क और शिंजुकु ग्योएन राष्ट्रीय बाग ओहानामी के लिए टोक्यो के लोकप्रिय स्थलों में से हैं। इसके अलावा सुमिदा नदी और मेगुरो नदी के किनारे लगे पेड़ भी बहुत सारे लोगों को आकर्षित करते हैं।
3: कई जगहों पर रात में पेड़ों पर लाइटें भी लगाई जाती हैं, जिससे रात को भी ओहानामी का आनंद लिया जा सके।
2: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
3: अगले पाठ में ताम रामेन नूडल्स की एक लोकप्रिय दुकान में जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

property. हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 25 अगस्त मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खवानो से सुने समाचार। जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु का कहना है कि दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के सर्वोच्च पदों पर जापानी न्यायाधीशों का होना अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्थानों को मजबूती देने के जापान के प्रयासों को दर्शाता है। सोमवार को टोक्यो में आयोजित चौथी टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय विधि संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को मोतेगी ने एक वीडियो संदेश से संबोधित किया। विदेश मंत्रालय एशियाई और अफ्रीकी देशों के सरकारी अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का सटीक ज्ञान देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन करता है। मोतेगी ने कहा, हमने जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाई है वो कई चुनौतियों से घिर गई है, इसलिए हम एक ऐसे महत्वपूर्ण युग में जी रहे हैं जो ये निर्धारित करेगा कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय समग्र रूप से कानून के शासन पर आधारित एक स्वतंत्र और खुली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जापान विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और कानूनी व्यवस्था बनाए रखने में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्थानों की भूमिका को बहुत महत्व देता है और वो इन संस्थानों को मजबूती देने में सक्रिय है। मोतेगी ने जोर देते हुए कहा, हमारे सामूहिक प्रयास इस बात में दिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय दोनों के अध्यक्ष जापानी न्यायाधीश हैं। जापान सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए निवास परमिट प्रक्रिया से जुड़े शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया है। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और आव्रजन नियंत्रण अधिनियम में संशोधन के अनुरूप ये 1 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा। स्थायी निवास परमिट प्राप्त करने का शुल्क मौजूदा 10,000 येन यानी लगभग $63 से बढ़ाकर 2,00,000 येन यानी $1,250 से अधिक कर दिया जाएगा। ये प्रक्रिया केवल व्यक्तिगत रूप से ही पूरी की जा सकती है। निवास वीजा की अवधि बढ़वाने या निवास दर्जा बदलवाने का मौजूदा शुल्क 6,000 येन यानी लगभग $38 है, जबकि इसका ऑनलाइन शुल्क 5,500 येन यानी लगभग $35 है। लेकिन अब 3 माह के निवास वीजा का ऑफलाइन और ऑनलाइन शुल्क बढ़ाकर 10,000 येन यानी लगभग $63 कर दिया जाएगा। 1 साल के निवास वीजा का शुल्क बढ़ाकर 33,000 येन यानी $205 से अधिक कर दिया जाएगा, जबकि इसका ऑनलाइन शुल्क 27,000 येन यानी लगभग $170 होगा। 5 साल या उससे अधिक के निवास वीजा का शुल्क काउंटर पर 75,000 येन यानी लगभग $470 और ऑनलाइन शुल्क 65,000 येन यानी $400 से अधिक कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि वो शरणार्थी दर्जा प्राप्त लोगों सहित वित्तीय कठिनाइयों से जूझ रहे आवेदकों के लिए शुल्कों में रियायत देगी।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। एनएचके को पता चला है कि पूर्वोत्तर जापान के फुकुशिमा प्रीफेक्चर स्थित फुकुशिमा दाइची परमाणु बिजली घर में 2011 की दुर्घटना के बाद दूषण मुक्ति कार्यों के तहत हटाई गई मिट्टी को टोक्यो के बाहर दो जगहों पर इस्तेमाल किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार सरकार इस मिट्टी को टोक्यो के पड़ोसी शहर साइतामा और पूर्वोत्तर जापान के सेंदाई शहर में केंद्र सरकार के कार्यालय परिसरों में उपयोग करने की व्यवस्था के अंतिम चरण में है। मिट्टी को फुकुशिमा

0: प्रीफेक्चर स्थित अस्थायी भंडारण सुविधाओं में रखा गया है। कानून के अनुसार मार्च 2045 तक प्रीफेक्चर से बाहर इसका निपटान अनिवार्य है। सरकार की योजना है कि रेडियोधर्मी पदार्थों की कम सांद्रता वाली मिट्टी का इस्तेमाल देश भर में सार्वजनिक कार्यों और अन्य परियोजनाओं में किया जाए, ताकि अंतिम निपटान तक इसकी मात्रा में कमी लाई जा सके। इस योजना पर लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए सरकार पिछले साल से ही टोक्यो में प्रधानमंत्री कार्यालय व केंद्र सरकार के मंत्रालयों और एजेंसियों सहित कई स्थानों पर इसका उपयोग कर रही है। टोक्यो में मिट्टी को फूलों की कुछ क्यारियों और अन्य जगहों में डाला गया है। इसमें सरकारी मानक के अनुरूप प्रति किलोग्राम 8,000 बैक्वेरल से अधिक रेडियोधर्मी सीजियम नहीं है। इस मिट्टी को फैलने से रोकने के लिए इसके ऊपर साधारण मिट्टी डाली जाती है। दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो प्रीफेक्चर में हाल में आए भीषण भूकंप के बाद सोशल मीडिया पर निराधार जानकारी फैल गई है कि मुस्लिम निवासियों ने आश्रय स्थलों में परोसे गए पोर्क के व्यंजन की शिकायत करके परेशानी खड़ी की। एनएचके ने कुमामोतो प्रीफेक्चर सरकार के अधिकारियों और प्रीफेक्चर की 38 स्थानीय नगर पालिकाओं के अधिकारियों का साक्षात्कार लिया, जिन्होंने आश्रय स्थल स्थापित किए थे और पाया कि ऐसी कोई समस्या सामने नहीं आई थी। पिछले महीने कुमामोतो में भूकंप के बाद एक्स, थ्रेड्स और अन्य सोशल मीडिया पर ये कहा गया कि मुसलमानों ने खाद्य सहायता के रूप में परोसे गए पोर्क वाले मिसो सूप के बारे में शिकायतें की। ऐसी पोस्ट्स को कुल मिलाकर 1,60,00,000 से अधिक बार देखा गया। खबरों के मुताबिक ये पोस्ट्स भूकंप आने से पहले एक ऑनलाइन टिप्पणी पर आधारित थे। दरअसल प्रीफेक्चर में रहने वाले मुस्लिम लोगों के एक समूह और अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संस्थाओं ने भूकंप से प्रभावित मुस्लिम लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई थी। कुमामोतो प्रीफेक्चर के एक अधिकारी ने एनएचके को बताया कि आश्रय स्थलों पर इस तरह की कोई समस्या नहीं थी और किसी भी मुस्लिम व्यक्ति ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की कि खाद्य सहायता के रूप में उसे पोर्क व्यंजन परोसा गया। कुमामोतो इस्लामिक सेंटर के प्रमुख ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि इस तरह के पोस्ट ऑनलाइन फैलाए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग इन्हें सच मान सकते हैं। उन्होंने कहा कि फर्जी खबरों को नजरअंदाज करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं। उन्होंने कहा कि वे 25 वर्षों से जापान में रह रहे हैं और हाल में वे मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव में वृद्धि देख रहे हैं। उन्होंने कहा वे चाहते हैं कि जापानी लोग उन्हें बताएं अगर देश में मुस्लिम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, और वे इस्लाम के बारे में सवालों के जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं।
1: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 26वें पाठ में किसी चीज की कई विशेषताएं एक साथ बताना सीखेंगे।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो हारूसान हाउस के निवासियों मिया और काइतो और मकान मालकिन हारूजी के साथ ओहानामी करने एक उद्यान में आई है।
0: जापान के लोग वसंत ऋतु में खूबसूरत गुलाबी चेरी के फूल यानी साकुरा देखने उद्यानों में जाते हैं। इस प्रथा को ओहानामी कहते हैं। लोग पेड़ों तले टहलते हैं, उनके नीचे बैठकर खाते पीते हैं। ताम भी अपने दोस्तों के साथ चेरी के एक पेड़ के नीचे दरी बिछाकर बैठी है।
1: तो आइए सुनते हैं 26वें पाठ की बातचीत।
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
3: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
4: いいね。
0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
1: काइतो ने खाने के डिब्बे निकालकर दरी के बीच में रखते हुए कहा,
2: ओबेंटो दायो।
0: ये हैं खाने के डिब्बे।
2: बोकु गा त्सुकत्ता दा। दोज़ो।
0: मैंने बनाए हैं। लो।
1: मिया रंग बिरंगा खाने का डिब्बा देखकर बहुत प्रभावित हो गई। उसने कहा,
3: कीरे।
1: कितना सुंदर है।
0: ताम ने भी प्रशंसा की,
3: सुगोई।
1: वाह।
3: इतादाकिमास।
1: शुक्रिया।
0: फिर ताम ने जापानी ऑमलेट से शुरुआत की।
3: कोनो तमागो याकी अमाकुते ओइशी देस।
1: ये जापानी ऑमलेट मीठा और स्वादिष्ट है।
0: उसके बाद मिया ने कहा,
4: काइतो वा होंतो नी ल्योरी गा जोजू दा ने।
1: काइतो, तुम सचमुच बहुत अच्छा खाना पकाते हो।
0: तो काइतो ने जवाब दिया,
2: बोकु शेफ नी नारिताई दा।
0: मैं शेफ बनना चाहता हूँ।
1: ये सुनकर मिया ने कहा,
4: ई ने।
1: ये तो अच्छी बात है।
0: लगता है काइतो बहुत प्रतिभाशाली है।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
3: कोनो तमागो याकी अमाकुते ओइशी देस।
1: यानी ये जापानी ऑमलेट मीठा और स्वादिष्ट है। ये वाक्य सीखकर आप किसी चीज की कई विशेषताएं एक साथ बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: कोनो तमागो याकी
0: का अर्थ है ये जापानी ऑमलेट।
5: तमागोयाकी
0: का मतलब है जापानी ऑमलेट और ये खाने के डिब्बे में शामिल किया जाने वाला एक आम व्यंजन है।
1: इसे बनाने के लिए अंडों को जायकेदार रसे और चीनी के साथ फेंटते हैं और पके हुए अंडे की पतली परतों को लपेटकर मोटा और नर्म ऑमलेट तैयार करते हैं।
5: अमाकुते
0: बना है ई विशेषण
5: अमाई
0: से, जिसका अर्थ है मीठा, और
5: ओइशी
0: का मतलब है स्वादिष्ट।
1: इस वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी चीज की विशेषताएं बताने के लिए दो या अधिक विशेषणों को जोड़ सकते हैं। अगर आज के मुख्य वाक्य की तरह पहला विशेषण ई विशेषण हो तो उसके अंत में लगे ई को हटाकर
5: कुते
1: लगाते हैं और उसके बाद अगला विशेषण जोड़ते हैं।
0: जैसे इस वाक्य में अमाई से बना है
5: अमाकुते
0: और उसके बाद लगा है
5: ओइशी,
0: तो बन गया
5: अमाकुते ओइशी।
1: तो सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: अमाकुते ओइशी देस। कोनो तमागो याकी अमाकुते ओइशी देस।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक महिला किसी उद्यान के बारे में अपने विचार बता रही है।
6: उएनो कोएन दो देशता का?
7: हिरोकुते किरेई दे तोतेमो योकत्ता देस।
1: अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले पुरुष ने पूछा,
6: उएनो कोएन दो देशता का?
0: उएनो पार्क कैसा लगा?
1: यहाँ
5: उएनो कोएन
1: का अर्थ है उएनो पार्क। यह उद्यान टोक्यो में है और बहुत बड़ा है।
5: どうでしたか?
1: का मतलब है कैसा लगा? यह किसी पुरानी बात के बारे में विचार पूछने का तरीका है।
0: महिला ने उत्तर दिया,
4: हिरोकुते किरेदे, तोतेमो योकत्ता देस।
1: बड़ा, सुंदर और बहुत अच्छा था।
5: हिरोकुते
0: बना है ई विशेषण
5: हिरोई
0: से, जिसका अर्थ है बड़ा। विशेषण के इस रूप का उपयोग अगला विशेषण जोड़ने के लिए किया जाता है।
1: उसके बाद आया है शब्द
5: किरेदे,
1: जो ना विशेषण
5: किरेना
1: यानी सुंदर से बना है। ना विशेषण के बाद एक और विशेषण जोड़ने के लिए अंत का ना हटाकर
5: दे
1: लगाते हैं।
0: और
5: तोतेमो योकत्ता देस
0: का अर्थ है बहुत अच्छा था। तो इसे सुनिए और अभ्यास कर लीजिए।
5: हिरोकुते किरेदे, हिरोकुते किरेदे, तोतेमो योकत्ता देस।
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको बिल्ली की प्यारी सी मूर्ति उपहार में मिली है। आप बोलना चाहते हैं कि वो छोटी और प्यारी है। छोटी को जापानी भाषा में कहेंगे
5: चीसाई
1: और प्यारी को
5: कवाई।
1: वाक्य के अंत में ने लगाकर आप दूसरे व्यक्ति की सहमति की आशा कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए।
4: चीसकते कवाई देसने।
0: अब मान लीजिए किसी ने जापान की रेल सेवा के बारे में आपकी राय पूछी है। आप कहना चाहते हैं कि जापानी रेलगाड़ियां समय की पाबंद और सुविधाजनक हैं। समय की पाबंद कहने के लिए जापानी शब्द है
5: सेकुना
0: और सुविधाजनक के लिए जापानी शब्द है
5: बेंडीना।
0: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
8: सेकुदे बेंडी देसने।
1: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो काइतो की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
2: दोजो।
0: आज के पाठ में
5: दोजो
0: का मतलब है लो। इस शब्द का कई तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, जैसे किसी को खाने की चीज देते समय या कुछ करने की अनुमति देने के लिए। कोई चीज पकड़ाते समय भी इसका उपयोग कर सकते हैं।
1: तो सुनिए और दोहराइए।
5: दोजो।
0: अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
3: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
4: いいね。
9: ハルさんの知恵袋。
1: अब हम लेकर आए हैं अंश, हारू जी की सलाह। आज हम बताएंगे ओहानामी यानी चेरी के फूल निहारने की प्रथा के बारे में।
0: जापान में चेरी के फूल यानी साकुरा लगभग मार्च से मई के महीने तक जापान के दक्षिण से लेकर उत्तर की दिशा में खिलते हैं।
1: लोग ये जानने के लिए मौसम पूर्वानुमान सुनते रहते हैं कि ये फूल कब कहाँ खिल रहे हैं और कितने प्रतिशत खिल चुके हैं। उस जानकारी के आधार पर लोग ओहानामी करने की योजना बनाते हैं।
0: ओहानामी के लिए लोग अपने घर के पास के बाग बगीचों में या सड़क किनारे लगे चेरी के पेड़ देखने तो जाते ही हैं। साथ ही इन फूलों के लिए प्रसिद्ध दूर के क्षेत्रों में जाने वाले लोग भी कम नहीं है।
1: उएनो पार्क और शिंजुकु ग्योएन राष्ट्रीय बाग ओहानामी के लिए टोक्यो के लोकप्रिय स्थलों में से है। इसके अलावा सुमिदा नदी और मेगुरो नदी के किनारे लगे पेड़ भी बहुत सारे लोगों को आकर्षित करते हैं।
0: कई जगहों पर रात में पेड़ों पर लाइटें भी लगाई जाती हैं, जिससे रात को भी ओहानामी का आनंद लिया जा सके।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम रामेन नूडल्स की एक लोकप्रिय दुकान में जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।